बापू रोवे मच गई फसल गुड़े पंज छे किले नाल चाचे दे सानू चप्पलां हुण तक जुड़िया नहीं कित्थों लईए बैग वरसाचे दे सुपने भी आउण सलाबे नहीं साडे घर दियां छत्तां कच्चियां ने करजे विच डुबे हरफ दियां जो तू सुनिया गल्लां सच्चियां ने जो तू सुनिया गल्लां सच्चियां ने।

0: दिमाग से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते।
1: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

ओ सानू मंजला ना प्यार मेरे हीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं।

0: अपना फर्ज अदा कर गया, असि अपना फर्ज निभावांगे, तेरी रीत नू लैके चलांगे, तेरे वांगू यंड करावांगे।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा।

0: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
1: तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन।

0: पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

तेरी यादों के सहारे जी रहा हूं, क्योंकि तू ही है आशिकी, तू ही है बंदगी। कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे बिना भी जीनी पड़ेगी जिंदगी।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।
1: शेख ये बात ही गया।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा ये यकी नाचो नाचो नाचो नाचो।
1: अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा।

0: थोड़े चा ते बहुते दर्द जो दिल दे विच लको गया है। लै मां तेरा सियाने वर्गा पुत परदेसी हो गया है, परदेसी हो गया है।
1: Voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

वफा तो बेकदर, यार बोले दे खबर, मैं दुनिया से बेखबर, ए खुदा मुझे दे सबर, तू साथ है तो किसका डर, वो देता हर दिल में घर, तो क्यों इतना बेसबर, जिंदगी खेल नहीं, ये सिर्फ एक तमाशा है, कितनों को जेल हुई, जुर्म में इजाफा है, हम आना के देर हुई, इस कलम से वादा है।

0: कौन कोई कैसे महफूज है मेरा सवाल किसी का उरूज
1: सर बेअसर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ऐ खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर हर जहर बेअसर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ऐ खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर।

0: जाने जाना तुम मुझे मदिरा से बड़ो मैं खाना लगती हूँ।
1: The voice for your community, the voice of the city, CJMR 1320.

जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो, जलने दो जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो।

ज्यादा ना सुना कर उनकी, तू ज्यादा ना सुना कर उनकी, बस अपने ही किया कर मन की, बस अपने ही किया कर मन की। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करें फिर तू।

है सदियां खुशबू का दर है, ये शहरे मोहब्बत मेरा हम सफर है, केसर के रंगों को ओढ़े है शब भर, है दिलचस्प बातें है दिलकश ये मंजर, जो मांगी दुआ में मन्नत

भाती सफर तू बता मुझको चलना किधर है मुझको तलब खुद से मिलना किधर है जो मांगी दुआ में मन्नत यही है सच तो है दुनिया की जन्नत यही है।

0: जब करेगा दुआ कोई यार के लिए, खुदा भी टाल देगा। जब होगी बात बेवफाई की, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा। जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।
1: Your home for community. CJMR 1320.